0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
1: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
4: व्हाट अ सेशन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक नाउ.
5: हाशमी इज़ पगोल, डेली लो फिट रहो.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
7: सोशल मीडिया सार्फीन, खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे, बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का कयाम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें, धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें, वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं, ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें, सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: This program was brought to you by Tufan hai har jeet ki pehchan hai and
1: Hire ka naya no frost IoT refrigerator twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
0: and
2: Phoenix laga aur bhul ja
0: And
3: sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur apne toilet ko chamakta hua saaf
4: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan muft IBFT muft checkbook muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch HBL Freedom Account जहाँ ख्वाब वहाँ HBL
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीत

0: जॉब्स के लिए जैज कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, तब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
9: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
8: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
9: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
6: आइए वेट से आगे का सोचें।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
12: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिसपन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ. इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत, सेहतमंद जिंदगी. प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मुईद जैगम, वाइस प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोस्थोडोंटिक्स, राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज लाहौर. बुध 15 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर. डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको एड एंड ट्रफ दिखेगा, तब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: Lahore. Get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
1: नाज़रीन, ताज़ातरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
2: बंद करो ना ढक्कन।
3: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
5: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मुईद जैगम, वाइस प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोस्थोडोंटिक्स, राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज लाहौर, बुध 15 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा।
1: हाय फ्रेंड्स, आई एम विकास जुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग आवर ड्रीम्स, लाइव्स एंड आवर फैमिलीज। The anti-narcotics force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
4: FM 100.
5: Assalamualaikum Pakistan.
1: Azan-e Zuhr पेश की जा रही है Sufi Soap Special Quality के तावन से।
6: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई, फिर भी काफिर दूसरी हस्तियों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहरा।

0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मुईद जैगम, वाइस प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोस्थोडोंटिक्स, राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज लाहौर, बुध 15 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kal Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: लिया, तो समटाइम्स जो है वो कुछ बाय बर्थ भी बच्चों के दांत ऐसे आपने देखे कि जो नहीं होते?
1: जी बिल्कुल, ये कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कुछ बच्चों के दांत आते ही नहीं है, खसूसी तौर पे दूध के दांत तो आ जाते हैं लेकिन कुछ परमानेंट दांत नेचुरली मिसिंग होते हैं।
0: ओके,
1: ठीक है, तो वो एक हमारी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं। जारी बात है वो आपको 6-7 साल के बाद जब दांत परमानेंट दांत आने की उम्र शुरू होती है तो उसके बाद ही आपको पता चलता है। और उसमें फिर ये है कि पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं कि जी बच्चे का दांत टूट गया या टूट नहीं रहा और दूध का दांत लिंगर ऑन चलता आ रहा
0: है
1: तो फिर उसका हम एक्सरे वगैरह करके देख लेते हैं, उसमें पता चल जाता है कि जी ये दांत नीचे बना ही नहीं, वो कुदरती तौर पर जेनेटिकली ऐसा होता है।
0: अच्छा, बहुत जबरदस्त जी, इसका मतलब आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत जबरदस्त है। और हेल्थ की बात हो रही है, प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल के तावन से आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोईद जैगम हमारे साथ मौजूद है और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। जितनी भी माएं हमें सुन देख रही हैं वो कान लगा के सुने और आंखें खोल के सुने देखें क्योंकि आज बात जबरदस्त होने जा रही है। बच्चों के जो प्रॉब्लम है वो एक साइड पर, सबसे पहले हम सर की जानिब चलते हैं, पूछते हैं कि जो मेन रीजंस हैं जो कि लोगों के दांत जो है वो लॉस हो जाते हैं यानी गुम हो जाते हैं, वो क्या रीजन है, मेन रीजन क्या है इसकी?
1: देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और पाकिस्तान में दो बीमारियां ऐसी हैं जो जिनकी वजह से दांत निकाले जाते हैं या निकलवाए जाते हैं या निकालने पड़ते हैं।
0: ओके,
1: उनमें से एक तो मसूड़ों की बीमारी है जिसे हम जो है जिंजिवाइटिस या पेरिओडोंटाइटिस कहते हैं।
0: ओके,
1: और उसमें होता यह है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दांत जो है हल्का हिलना शुरू होता है। अगर तो हम उसको उसी वक्त देख लें, पकड़ लें, डॉक्टर के पास चले जाएं तो उसके लिए शायद कुछ हम इलाज कर सकें, लेकिन हमारे थोड़ी सी इसकी तरफ इग्नोरेंस है हमारे सोसाइटी के अंदर।
0: Exactly.
1: तो वो फिर दांत जब ज्यादा हिलना शुरू हो जाता है, यानी जब उसकी रूट जो है और हड्डी जो है वो आपस उनका साथ छोड़ देती है,
0: जब वो अल्लाह को प्यारा होने लगता है,
1: फिर हमारे पास कोई और हल नहीं होता मास वाइज को निकाले। तो दूसरी जो चीज है, जो सबसे कॉमन चीज है, वो है दांतों को कीड़ा लगना।
0: दांतों को कीड़ा लगना,
1: और ये आजकल बड़ा कॉमन है क्योंकि हमारे जो जंक फूड का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे इस्तेमाल है, तो उसमें होता यह है कि ये जंक फूड जो होता है ये नॉर्मली स्टिकी होता है, ये दांतों में जमा रह जाता है और अगर आप दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं करते तो फिर वही जो है वहां पे एसिड प्रोड्यूस होता है
0: आपके
1: अंदर, तो वो दांतों को कीड़ा लग जाता है। अब इसमें भी यही है कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे चले जाएं तो डेफिनेटली उसका इलाज है, लेकिन जब आप फिर एक सर्टन लेवल क्रॉस करने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉमन मेथ है कि दांत में दर्द होगा तो हम जाएंगे, ठीक है, तो जब दर्द तक बात जाती है फिर बात जो है वो हाथ से निकल जाती है।
0: बहुत खूबसूरत बात ये है जी। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोईद जैगम हमारे साथ मौजूद हैं, आज बात हो रही है ओरल हेल्थ की, प्लैटिनम फार्मा के तावुन से सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी, और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोईद हमारे साथ मौजूद हैं। सर का बहुत खूबसूरत जो एक बात जो कि तमाम डॉक्टर्स कहते हैं और आज जो है वो बहुत अहम टॉपिक है जिसमें आपके जो दांत है वो लॉस क्यों हो जाते हैं। तमाम सुनने और देखने वालों को कहा जाएगा कि दांत इससे पहले कि गिर जाए, टूट जाए, उसकी मियाद खत्म हो जाए, इससे पहले कि गेम हाथ से पानी सर से ऊपर से गुजर जाए, तो सर इसी जगह पे हम रुक के, मतलब आप हमारे जितने भी सुनने और देखने वाले हैं उनको क्या ऐसी कोई ऐसे सैंपल्स हैं, कोई मतलब ऐसा कोई अलामत हो जो आप उनको वार्न करना चाहें?
1: देखें, वार्निंग तो ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आप दिन में कुछ 4-4 दफा दांत साफ करें। मैं हमेशा से इसी चीज का वो हूं प्रोपोनेंट कि आप बेशक दिन में एक दफा दांत साफ करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें। गिव गुड 5 to 7 minutes टू योर टीथ। 24 घंटे में से 5 से 7 मिनट आपने अपने दांतों को देने हैं। और मैं अपने पेशेंट्स को, सभी को ये कहता हूं कि शीशे के सामने खड़े हो जाएं और एक साइड से लेके दूसरी साइड तक, ऊपर नीचे, दांतों के बाहर भी और अंदर भी, यानी आपका ब्रश जो है वो आपके हर दांत को हर सरफेस पे टच करना चाहिए।
0: ओके,
1: ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर जब आपने दांत साफ कर लिए और आपने एक दफा अपना दांतों में देख लिया तो वो ठीक है, तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कहीं आपको कोई काला निशान, कोई दाग नजर आता है, या आप देखते हैं कि आपके गम्स में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, या आपके दांत में कोई खाना कहीं फंसना शुरू हो गया है, तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं जो कि शुरू के साइंस हैं कि जिसके ऊपर आपको अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए।
0: यानी दांतों में गैप, आपने कहा कि मतलब
1: गैप भी कह सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली कैविटी जो है।
0: ओके, बहुत खूबसूरत जी, बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन, आज से पहले शायद हमने इस बारे में कभी भी नहीं सुना होगा। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोईद जैगम हमारे साथ मौजूद हैं, ओरल हेल्थ की बात हुई है प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल के तावन से। प्लैटिनम का बहुत बहुत शुक्रिया, एफएम 100 का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने जबरदस्त इतने मालूमती प्रोग्राम आपके लिए लेके आते हैं जी। अच्छा सर, हमें ये बताएं क्या डेंटल जो एक्सरे होते हैं, दांतों के जो एक्सरे हैं, वो हार्मफुल हैं? क्योंकि बहुत से लोग इस

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। No Frost, No Worries।

0: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है। बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.

महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, मोमिनो अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक व बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्शिश देगा और अल्लाह बड़े फजल वाला है। सूरह अनफाल। FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: आज भी सुगोर डेली लो फिट रहो।
1: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। pta.txt महफूज है, लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
2: ये मुफादे आमा का पैगाम आप सब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: स्वीपी क्लीन। करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।

0: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है। बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.

0: आज भी इस्तेमाल डेली लो फिट रहो।
1: नाजरीन ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
2: बंद करो ना ढक्कन।
3: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: आशमीष बिगोल डेली लो फिट रहो.
1: This program is brought to you by
2: Sweepy Clean. करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.

0: Fire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
1: What a session! It's time for a break now.
2: Hashmi is the goal. Daily low, fit raho.
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: location for maximum music.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

0: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
1: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
0: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
1: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
0: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
2: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
0: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
1: आइए सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: it's not just another radio station for you. FM 100 is your need. Music, entertainment, weather update, stocks update, currency update, traffic updates, sports, news. FM 100 is your need. Yes, indeed.
1: The new music.
2: It's here for
1: first.
3: More fun.
2: More music sequence. On.
4: FM 100.
5: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL

HPL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HPL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HPL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: 100 FM, 100 FM, the best music, best music, number one FM. We play the best music. We play the most music.
3: Oh, that's nice.
2: This is 100 FM.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: This is your radio. This is your radio on Hit Radio 100.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
3: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: This program is brought to you by
2: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No Frost, no worries.
3: This is your music.

जमाने पे जाली जमाना मैं नहीं जमाने से कटर कराची बेटा हवा आने दे भाई करे बात सीधा सौ आने की एंटी चिल्लर बिके सवा आने पे।

0: The Big Bear 100.
1: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिना मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का कयाम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
4: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रब्ता करें 0300-555-0011 पर।
5: This program is brought to you by
6: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost, No Worries।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: This program is brought to you by
2: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
3: One, two, three, everybody come with me
4: This is FM 100
3: Around the world
5: आप सुन रहे हैं FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन
3: FM 100
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: आजान इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज इशा का वक्त हो गया है।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हो, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह बनी इसराइल।
1: FM 100।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज़ कैश।
1: This program is brought to you by
2: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
3: Keep your wall

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300 555 0011 पर।
3: This program is brought to you by
4: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। No Frost, No Worries।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: This program is brought to you by
2: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No Frost, no worries.

अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज़ कैश।

0: No DJ, DJ. Here they are. Just music to make you rock.
1: What's up, everyone? You are listening to the best station.
2: 100. Hit music, hit music.
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300 555 0011 पर।

अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Ladies and gentlemen.
3: Hello.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, तब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।